साक्षी से चिया सागा पिसा चे ओ लसुदा कानो ओपा ओपा चे ओ लसुदा कानो का खालाली चे मिस्ती गर्दिया ली देख जाना वानो पालेप्सा स्ती नागा पिमास पालेप्सा स्ती नागा पिमास